Onun mazili de mango tanga mi hiwa fe firi wiki exka FM. Madlanga kumisi ngenge ki ok i te ki i ati kai un he kastiku ge kahana o i akumisala ge kana ti khoa i he ge ki ok i he ngwa ki i singe ki khamsa he ge nghe o ये अं है कि उसले गए खाते हैं ये इको मुझे कागे कुकिंग के कुमिसी अं के इगं इगे कुकिंगम फिर से तरंग है कुमिसी इनके वाह बुए सेली मतलंगा ये ओक ए के कहें कि वाह ऐसा मुझका अंकाएं से कागे गुस्सा के कमा ये इगे को ताकि ये कं